पर उसम सती तमिस स्पीर सूदन सती जगाए पीपल पुकार स्वीट ब्रोयर बीस्टू प्रेस कुस्ती